0: नंद जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वागुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: zítra. Om šanti, šanti, šanti.

तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य, सूर्याय दक्षा धरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य, सूर्याय दक्षा धरनाशकाय। कंठ में भी कर दो, गले में हिया। शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य, सूर्याय मेष धरनाशकाय। हरि ओम पिनाकहस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाकहस्ताय सनातनाय। ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकाराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वा वस्तम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुण्डरी काक्षम स्वबाह्याभ्यंतर शुचि यस्मृत पुण्डरी काक्षम स्वबाह्याभ्यंतर शुचि। ज्यादा हो गए तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। गुड गुड पिनाकहस्ताय जटाधराय। गुड ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय। ए प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण क्षरन्तु च असे देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चनः। हरि ओम गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम जलस्नानं करिष्यामि श्रीगं गणाधिपतये नमः। हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि। ओम श्री नारायण गंगे जैमिने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चन। इति जलस्नानम करिष्यामि, इति जलस्नानम करिष्यामि। ओम

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम पावन यज्ञ हेतु च पय स्नान नार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम इति पंचामृतम मयानीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। शर्करया स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। हरिः ओम। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। हरिः ओम। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनम परम पय स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पावन यज्ञ हेतुश्च पय स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम सदा शिवाय नमः। साम सदा शिवाय नमः। एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग। हरिम सदा शिवाय नमो नमः। साम सदा शिवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम तरु पुष्प रेतु समुद्भूतम सुस्वादम मधुरम मधु तेज पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इदिम मधु स्नानम करिष्यामि। शिवलिंगाय नमो नमः। हरिः ओम। ओम पयस्वस्तु समुद्भूतम मधुराम्ल शशी प्रभम दद्यानीत मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओदो सदा शिवाय नमः। ओम सदा शिवाय नमः। साम सदा शिवाय नमः। हरि ओम। पंचामृतम मयानीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पंचामृतम मयानीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। हरिः ओम। पंचामृतम मयानीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम हर हर महादेव। नाउ वाटर। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। काशी भागीरथी सर्वतीर्थाथी जलम सन्निध्यौ कुरु। ओम श्री नारायण नमः। श्री पशुपते नमः। श्री गंगाधराय नमः। जटाधराय नमः। ओम अष्टांगलिंगाय नमः। ओम श्री सदाशिवाय नमो नमः। ओम लिंगाष्टकाय नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती पानी और हो गए। अब तिलक तिलक करना है। भस्म का अच्छे से तिलक करके हरिः ओम। चंदनंतु महत्पुण्यम पवित्रम भावनासनम आपदम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम सदा शिवाय नमः। साम

0: య భస్మాంగరాయ మహేశ్వరాయ పినాకహస్తాయ సనాతనాయ యక్షస్వరూపాయ జటాహరాయ దేవాయ దిగాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాయ మహేశ్వరాయ దివాయ దివ్యాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ.
1: चावल और चावल भी लगाइए सब लौंग इलायची वस्त्र जनेऊ. ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय. ఓం మాల్యాదిని సుగంధిని మాలత్యాదిని ఓయ్ ప్రభో మయా నితాని పుష్పాణి పూజార్థం ప్రతిగ్రీయతాం పూజార్థం ప్రతిగ్రీయతాం నానః రత్నాని సుగంధిని ఫలాని చ మయా దత్తాని లేపార్థం పూజార్థం ప్రతిగ్రీయతాం పుగీఫలం మయాదిత్తం నాగవల్లిర్దళయుక్తం ఏలాచూణాది సంయుక్తం నాగవల్లిర్చూణ సంయుక్తం సమర్పయామి. కాయిన్స్. ओम हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीज विभावसु अनंत पुण्यम फलम दद शांति प्रेक्ष्य मे दक्षिणा समर्पयामि साम सदा शिवाय नमो नमः. वस्त्रम. ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते लक्ष्य वस्त्रम समर्पयामि श्री नारायण साम सदा शिवाय नमः. बस अब धतूर धतूर की जगह में इसी को हम करें, इसको धतूर को स्मरण करके. हरि ओम धतूर सहित पुष्पादि समर्पयामि कान्नात कान्नात प्ररोहन्ति एवान दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन ये दुर्वाम समर्पयामि. बस त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम. हाँ, 11 टाइम चढ़ाइए. त्रिजन्मम त्रिगुणाकारम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम. एवरीवन कैन पुट दिस वेरी गुड टुडे इफ समबडी. हरि ही ओम क्या हो गए 11 टाइम्स. अच्छा. ओम माल्यादिनी सुगंधिनी तिलक लगाइए सारे भगवान को पचाए. कैन यू पास दैट थाली टू स्वामी. गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गमगणाधिपतये नमः. श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बीलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्री गमगणाधिपतये नमो नमः. सिंदूर भी लगा दीजिए. सिंदूरम शोभनम चैव कामदम प्रतिगृहताम सिंदूरम शोभनम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम अक्षताश्च कुंकुमाक्ता शुभ्रा खुनाश्च निर्मला मया प्रपादिते देतुभ्यं वासति प्रतिगृहताम. थोड़ा सा लाल व्हाइट में लाल बहुत अच्छा एक एक बिंदु लगाई थी बहुत. हरियम सांब सदा शिवाय नमः. ओम चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा. हरियम श्री सांब सदा शिवाय नमः. समन कैन प्ले द बेल. ओम सांब सदा शिवाय नमः. ना अगरबत्ती

0: शंकर भगवान की जय। अगरबत्ती वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। One leaf here and water. वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। Some water. हरि ओम कर्पूर गौरम कर
1: वाटर
0: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिम्न गुरुवेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री सदा शिवाय नमः।
1: They go back out. Thank you.

0: more water.
1: ओम प्राच्यय नमः सिंदूर भी डालिए। ओम पश्चिमाय नमः। ओम उत्तराय नमः। उत्तर दिशे नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम आग्नेय नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम नैऋत्ये नमः। शनाय नमः। ओम भूतलाय नमः। नीचे ओम आकाशाय नमः। आकाश में बस अब फूल रख देंगे चारों दिशा में। नाउ फ्लावर, वी नीड टू हैव फ्लावर।
0: ब्रिंग इन 9 कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन।
1: या दैट इज ऑलरेडी। हरि ओम। ओम सूर्याय नमः। ओम सोम सेता वाइट। ओम चंद्राय नमः। ओम भौमाय लाल रेड। ओम भौमाय नमः। भौमाय नमः। नाउ ग्रीन। बुम बुदाय नमः। ओम बुम बुदाय नमः। ओ येलो। ओ ब्रिम बृहस्पतये नमः। नाउ व्हाइट डायमंड कलर। ओम राम ब्रिम रौ शुक्राय नमः। नाउ ब्लैक सनी कलर। ओम शमशनेश्वराय नमः। शमशनेश्वराय नमः। नाउ ब्लू। ओ ये या ओम राम राहवे नमः। ब्राउन Oh, maybe the one like pinky style. Yeah, you got it? Okay. Yeah.
0: Where is the vokai? Where is the
1: Basma?
0: Basma.
1: There is a small katori. Where is that Basma? Bas. Om Kim Kedave Namaha. Bas. Bas. Ab Agni ko प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें। ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षिण सूर्य अजायत श्रोता अद्वायु ब्राणस मघ्रार अग्नि अजायत। ओम अग्ने सानिल्य गोत्र। ओम अग्ने सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षुर सूर्य अजायत श्रोता द्वायु प्राणस मुखार अग्नि अजायत। बोलिए अग्नि देवता की जय। नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी थ्री स्टिक्स थ्री ओनली फर्स्ट थ्री डिफरेंट सेपरेट ओके। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम धनंतरवे स्वाहा। Oh, now where is that long stick for the ghee? Ghee ke liye. Sure. Om Prajapate Swaha.
0: Now just take it away.
1: Put it in your chest and when you say Swaha. Okay. जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए, ओ जो पीछे आए
0: रतन देवी सूरज देवी those who just came now put them till the gods from this here and where is this thali

0: आप कहाँ?
1: ओके
0: ये मेरा है. हाँ हाँ,
1: यू कैन से विद स्वाहा. ओके,
0: टुगेदर वी विल चैंट स्वाहा. एंड एज विश्व गुरु जी सेज दैट शो मीन्स दैट द परमात्मा, हा मीन्स मी, एंड द सोल कॉन्शियसनेस टू बॉडी कॉन्शियसनेस connecting each other, and whatever negativity, ego, jealousy, hatred with us, we sacrificing, because the fire can burn everything.
1: That's not possible, they will not do.
0: And and also that we wish that the fire can burn our bad karma as it is burning the firewood. Okay, let's start. ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः.

ॐ नृवाय स्वाहा इदं धनंद्रय इदन्नम महा ओम गणनांत्वा गणपति गुं हवामय प्रेणांत्वा प्रेपति गुं हवामय बसुवम आहम जानी गर्वधमा त्वमसि गर्वधम स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यं नमः स्वाहा। शची पुरंदराभ्यं नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यं

ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोधा नमस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा, ओम ब्रह्मपुत्रिये विद्महे सरस्वतीये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा, ओम महालक्ष्मीये विद्महे विष्णुपत्न्ये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा, दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा, ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः, नमः प्रकृते भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम स्वाहा, ओम अम्मे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कस्सन सशक्त शोक सुभद्रिकां काम्बिलवासिनीं स्वाहा, एहे ई ब्रह्मन्द महादेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, पशुपत्ये नमः स्वाहा, अघोराय नमः स्वाहा, साम सदाशिवाय नमः स्वाहा, चारवेदाय नमः स्वाहा, ऋग्वेदाय नमः स्वाहा, सामवेदाय नमः स्वाहा, यजुर्वेद

ॐ स्थिराय नमः स्वाहा, ॐ स्थाणवे नमः स्वाहा, ॐ प्रभवे नमः स्वाहा, ॐ भीमाय नमः स्वाहा, ॐ वरदाय नमः स्वाहा, ॐ प्रभवाय नमः स्वाहा, ॐ प्रवराय नमः स्वाहा, ॐ वरदाय नमः स्वाहा, ॐ सर्वात्मने नमः स्वाहा, ॐ सर्वविख्याताय नमः, ॐ सर्वस्मै नमः स्वाहा, ॐ सर्वकराय नमः स्वाहा, ॐ भवाय नमः स्वाहा, ॐ जटिने नमः स्वाहा, ॐ चर्मिणे नमः स्वाहा, ॐ शिखण्डिने नमः स्वाहा, ॐ सर्वांगनाय नमः स्वाहा, ॐ सर्वभावनाय नमः स्वाहा, ॐ हराय नमः, ॐ हरिणाख्याय नमः स्वाहा, ॐ सर्वभूतहराय नमः स्वाहा, ॐ प्रभवे नमः स्वाहा, ॐ प्रवित्याय नमः स्वाहा, ॐ निवित्ताय नमः स्वाहा, ॐ नियताय नमः स्वाहा, ॐ शाश्वताय नमः स्वाहा, ॐ ध्रुवाय नमः स्वाहा, ॐ श्मशानवासिने नमः स्वाहा, ॐ भगवते नमः स्वाहा, ॐ खजराय नमः स्वाहा, ॐ गोचराय नमः स्वाहा, ॐ अर्दनाय नमः स्वाहा, अभिवाद्याय नमः स्वाहा, महाकर्मणे नमः स्वाहा, तपस्विने नमः स्वाहा, भूतभावनाय नमः स्वाहा, उन्मत्तवेशप्रच्छन्नाय नमः स्वाहा, ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः स्वाहा, ॐ महारूपाय नमः स्वाहा, महाकायाय नमः स्वाहा, ॐ वृषरूपाय नमः स्वाहा, महायशे नमः स्वाहा, महात्मने नमः स्वाहा, सर्वभूतात्मने नमः स्वाहा, विश्वरूपाय नमः स्वाहा, महाहणवे नमः स्वाहा, ॐ लोकपालाय नमः स्वाहा, ॐ अन्तर्हित्मने नमः स्वाहा, ॐ प्रसादाय, ॐ हृगर्भये नमः स्वाहा, ॐ पवित्राय नमः स्वाहा, ॐ महते नमः स्वाहा, ॐ नियमाय नमः स्वाहा, नियमाश्रिताय नमः स्वाहा, ॐ सर्वकर्मणे नमः स्वाहा, ॐ स्वयंभूताय नमः स्वाहा, ॐ आदये नमः स्वाहा, ॐ आदिकराय नमः स्वाहा, ॐ निधये नमः स्वाहा, ॐ सहस्रथाय नमः स्वाहा, विशालाक्षाय नमः ॐ सोमाय नमः स्वाहा, ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः स्वाहा, ॐ चंद्राय नमः स्वाहा, ॐ सूर्याय नमः स्वाहा, ॐ शनये नमः स्वाहा, ॐ केतवे नमः स्वाहा, ॐ ग्रहाय नमः स्वाहा, ॐ ग्रहपतये नमः स्वाहा, ॐ वराय नमः स्वाहा, ॐ अत्रये नमः स्वाहा, अत्र नस्मकर्ते नमः स्वाहा, ॐ मृगबाणपाण्याय नमः स्वाहा, ॐ अगनाय नमः स्वाहा, ॐ महातपसे नमः स्वाहा, ॐ घोरतपसे नमः स्वाहा, ॐ अदीनाय नमः स्वाहा, ॐ दीनसाधकाय नमः स्वाहा, संवत्सरकाराय नमः स्वाहा, ॐ मन्त्राय नमः स्वाहा, ॐ प्रमाणाय नमः स्वाहा, ॐ परमात्मतपसे नमः स्वाहा, ॐ योगिने नमः स्वाहा, ॐ यज्ञाय नमः स्वाहा, महाबीजाय नमः स्वाहा, महारेतसे नमः स्वाहा, ॐ गणपतये नमः स्वाहा, दिग्वाससे नमः स्वाहा, ॐ कामाय नमः स्वाहा, मंसवेद नमस्ते नमः स्वाहा, परमाय मंत्राय नमः स्वाहा, सर्वभावकराय नमः स्वाहा, ॐ हराय नमः स्वाहा, ॐ कमण्डलुधराय नमः स्वाहा, ॐ धनुन्ये नमः स्वाहा, ॐ बाणहस्ताय नमः स्वाहा, ॐ कपालवते नमः स्वाहा, ॐ असनये नमः स्वाहा, शतघ्निने नमः स्वाहा, ॐ खङ्गिने नमः स्वाहा, पट्टिसिने नमः स्वाहा, आयुधिने नमः स्वाहा, महते नमः स्वाहा, सुवस्ताय नमः स्वाहा, सुरूपाय नमः

0: स्वाहा। ओम तेजसे नमः। ओम तेज कराय निधये नमः। स्वाहा। उष्णीषिणे नमः। स्वाहा। शुभक्राय नमः। स्वाहा। उद्ग्राय नमः। स्वाहा। ओम विनताय नमः। स्वाहा। ओम दीर्घाय नमः। स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः। स्वाहा। ओम हरिकेशाय नमः। स्वाहा। सुतीर्थाय नमः। स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः। स्वाहा। श्रृंगालरूपाय नमः। स्वाहा। ओम सिद्धार्थाय नमः। ओम मुन्नाय नमः। ओम सर्वशुभंकराय नमः। स्वाहा। ओम अजाय नमः। स्वाहा। ओम बहुरूपाय नमः। स्वाहा। ओम गंधधारिण्ये नमः। स्वाहा। ओम कर्पूरदिने नमः। स्वाहा। ऊर्ध्वरेतसे नमः। स्वाहा। ऊर्ध्वलिंगाय नमः। स्वाहा। ऊर्ध्वसाये नमः। स्वाहा। नवस्थलाय नमः। स्वाहा। त्रिजटिने नमः। स्वाहा। चिरवाससे नमः। स्वाहा। ओम रुद्राय नमः। ओम सेनापतये नमः। ओम विभवे नमः। ओम अहस्वराय नमः। ओम नक्तस्वराय नमः। स्वाहा। ओम तिन्मगये नमः। स्वाहा। ओम सूचवर्षाय नमः। स्वाहा। शुभचर्षाय नमः। स्वाहा। ओम गजग्ने नमः। स्वाहा। ओम पाणिने नमः। स्वाहा। ओम दैत्यग्ने नमः। स्वाहा। ओम कालाय नमः। स्वाहा। ओम लोकदात्रे नमः। स्वाहा। ओम गुणकाराय नमः। स्वाहा। सिंहादूलरूपाय नमः। स्वाहा। आर्धचम्बावरावृत्ताय नमः। स्वाहा। कालयोगिने नमः। स्वाहा। महानादाय नमः। स्वाहा। ओम सर्वकामाय नमः। स्वाहा। ओम चतुष्पदाय नमः। स्वाहा। ओम निशाचराय नमः। स्वाहा। ओम प्रेतचारिणे नमः। स्वाहा। ओम भूतचारिणे नमः। स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः। स्वाहा। ओम बहुभूताय नमः। स्वाहा। ओम बहुधराय नमः। स्वाहा। ओ सोनार्वे नमः। स्वाहा। ओ अमिताय नमः। स्वाहा। ओम गतये नमः। स्वाहा। ओम नित्यप्रियाय नमः। स्वाहा। नित्यनर्तनाय नमः। स्वाहा। नर्तकाय नमः। स्वाहा। सर्वलालसाय नमः। स्वाहा। ओम घोराय नमः। स्वाहा। ओम महातपसे नमः। स्वाहा। ओम पाशाय नमः। स्वाहा। ओम नित्याय नमः। स्वाहा। ओम गिरिरुहाय नमः। स्वाहा। ओम नवसे नमः। स्वाहा। ओम सहस्त्रताय नमः। स्वाहा। ओम विजयाय नमः। स्वाहा। ओम व्यवसाय नमः। स्वाहा। अंतरिद्याय नमः। स्वाहा। ओ अतीन्द्राय नमः। स्वाहा। अघर्णनाय नमः। स्वाहा। ओम घर्षणात्मने नमः। स्वाहा। यगने नमः। स्वाहा। कामनाशकाय नमः। स्वाहा। दक्षगपाहाय नमः। स्वाहा। ओम सुसहाय नमः। स्वाहा। मध्यमाय नमः। स्वाहा। तेजपहारिणे नमः। स्वाहा। बलग्ने नमः। स्वाहा। मुदिताय नमः। स्वाहा। अर्थानाय नमः। स्वाहा। अजिताय नमः। स्वाहा। अवराय नमः। स्वाहा। गंभीरघोषय नमः। स्वाहा। गंभीराय नमः। स्वाहा। गंभीरबलहानाय नमः। स्वाहा। न्यग्नोरूपधराय नमः। स्वाहा। न्यग्रुधाराय नमः। स्वाहा। ओम वृक्षकर्णस्थिराय नमः। स्वाहा। ओम विभवे नमः। स्वाहा। सुतीक्ष्णदर्शनाय नमः। स्वाहा। महाकायाय नमः। स्वाहा। महाननयाय नमः। स्वाहा। विश्वक्षणाय नमः। स्वाहा। ओम हरये नमः। स्वाहा। यज्ञाय नमः। स्वाहा। संयुगापीडवाहनाय नमः। स्वाहा। तीक्ष्णातापाय नमः। स्वाहा। ओम हयर्षाय नमः। स्वाहा। सहायाय नमः। स्वाहा। कर्मकालविदाय नमः। स्वाहा। विष्णुप्रसादिताय नमः। स्वाहा। यज्ञाय नमः। स्वाहा। ओम समुद्राय नमः। ओम बड़मुखाय नमः। स्वाहा। उतासनसहासाय नमः। स्वाहा। उतासनसहायाय नमः। स्वाहा। ओम प्रशान्तन्वे नमः। स्वाहा। उतासनाय नमः। स्वाहा। उग्रतेजसे नमः। स्वाहा। महातेजसे नमः। स्वाहा। जन्यायः नमः। स्वाहा। बीजकालविदे नमः। स्वाहा। ओम ज्योतिषायनाय नमः। स्वाहा। ओम सिद्धये नमः। स्वाहा। सर्वविग्रहाय नमः। स्वाहा। ओम सिखिने नमः। स्वाहा। ओम मुनिने नमः। स्वाहा। जटिने नमः। स्वाहा। जलिने नमः। स्वाहा। ओम मूर्तिजाय नमः। स्वाहा। मूर्धजाय नमः। स्वाहा। ओम बलिने नमः। स्वाहा। वैणविने नमः। स्वाहा। ओम प्रणविने नमः। स्वाहा ओम तालिने नमः स्वाहा ओम खलिने नमः ओम कलंक कटाय नमः स्वाहा ओम नक्षत्र विग्रह हस्ताय नमः स्वाहा गुणबुद्धाय नमः स्वाहा ललाय नमः स्वाहा ओम अगमाय नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम विश्ववाहवे नमः स्वाहा ओम विभागाय नमः स्वाहा ओम सर्वगाय नमः स्वाहा अमुखाय नमः स्वाहा ओम विमोचनाय नमः स्वाहा सुरासुराय नमः स्वाहा हिरण्यकवचजटाय नमः स्वाहा मेदजटाय नमः स्वाहा बलचारिण्ये नमः स्वाहा महीचारिण्ये नमः स्वाहा ओम श्रुताय नमः स्वाहा ओम सूर्य तुर्य विदोनिताय नमः स्वाहा सर्वतुद्ध परिग्रहाय नमः स्वाहा सर्वतुर्य विनोदिने नमः स्वाहा व्यालरूपाय नमः स्वाहा गुहावासिने नमः स्वाहा गुहाय नमः स्वाहा मालिने नमः स्वाहा तरंगविदे नमः स्वाहा त्रिदशाय नमः स्वाहा त्रिकालरहिते नमः स्वाहा कर्म संबंध विवेचनाय नमः स्वाहा असुरेन्द्रानंदवदाय नमः स्वाहा ओम युधि शत्रुविनाशाय नमः स्वाहा सांग प्रसादाय नमः स्वाहा दुर्वासने नमः स्वाहा सर्वार्धिनिशीषाय नमः स्वाहा प्रस्कंदाय नमः स्वाहा यज्ञ विभागदे नमः स्वाहा अतुल्याय नमः स्वाहा यज्ञ विभागदाय नमः स्वाहा सर्वसवाय नमः स्वाहा सर्वचारिणी नमः स्वाहा दुर्वासे नमः स्वाहा ओम वासाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा ओम हेमाय नमः स्वाहा ओम हेमकाराय नमः स्वाहा निष्कमाय नमः स्वाहा ओम सर्वधारिणी नमः स्वाहा धरोदत्ताय नमः स्वाहा लोहिताक्षाय नमः स्वाहा ओमाक्षाय नमः स्वाहा विजयाक्षाय नमः स्वाहा विशारदाय नमः स्वाहा सहस्राय नमः स्वाहा ओनिग्राय नमः स्वाहा ओकर्त्रे नमः ओम सर्वपरिचरणिसाय नमः स्वाहा सर्परिचिरनिवासानाय नमः स्वाहा मुख्याय नमः स्वाहा अमुख्याय नमः स्वाहा ओम देहाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा सर्वकामदाय नमः स्वाहा सर्वकालप्रसादाय नमः स्वाहा ओम सुबलासाय नमः स्वाहा ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा सर्वकामवराय नमः स्वाहा ओम सर्वकाय नमः स्वाहा सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा आकाशनिवेशाय नमः स्वाहा निपातिने नमः स्वाहा अवसाय नमः स्वाहा ओम खगाय नमः स्वाहा ओम रौद्ररूपाय नमः स्वाहा अंशवे नमः स्वाहा आदित्याय नमः स्वाहा बहुरश्मे नमः स्वाहा ओम सुवर्चिने नमः स्वाहा ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा महावेगाय नमः स्वाहा मनोवेगाय नमः स्वाहा निशाचराय नमः स्वाहा सर्ववासिने नमः स्वाहा श्रेयवासिने नमः स्वाहा उपदेशकराय नमः स्वाहा ओम अकराय नमः स्वाहा ओम मुनये नमः स्वाहा आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा ओम संभवाय नमः स्वाहा संमग्नाय नमः स्वाहा सहस्रदाय नमः स्वाहा ओम पक्षिणे नमः स्वाहा ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा अधिशिप्ताय नमः स्वाहा विषामतमये नमः स्वाहा ओम उन्मादाय नमः स्वाहा ओम मदनाय नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा ओम असस्ताय नमः स्वाहा ओम अर्थकाराय नमः स्वाहा ओम असये नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामाय नमः स्वाहा ओम प्राचे नमः ओम स्वाहा ओम दक्षिणाय नमः ओम स्वाहा ओम वामनाय नमः स्वाहा ओम सिद्धयोगिने नमः स्वाहा ओम महर्षये नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा ओम सिद्धसाधकाय नमः स्वाहा भिक्षवे नमः स्वाहा भिक्षुरूपाय नमः स्वाहा विपणाय नमः स्वाहा मृदवे नमः स्वाहा अभयनाय नमः स्वाहा विशाखाय नमः स्वाहा षष्ठीभागाय नमः स्वाहा ओम गवापतये नमः स्वाहा वज्रहस्ताय नमः स्वाहा ओम पिनाकाय नमः स्वाहा सदाशिवाय नमः स्वाहा नाउ इन
1: 360
0: हो गया जस्ट वी फिनिश
1: yeah
0: 700 so this is a good meditation keep continuing meditation kali yuga om viskambine namaha swaha chamustamaya namaha swaha vrittavitakaraya namaha swaha talaya namaha swaha madave namaha swaha madukulochanaya namaha swaha vachaspataya namaha swaha vajasenaya namaha swaha nityamashrita pujitaya namaha swaha brahmacharine namaha swaha lokacharine namaha स्वाहा सर्वचारिणे नमः स्वाहा विचारविदे नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा निशाचरणे नमः स्वाहा पिनाकवृत्ते नमः स्वाहा ओम निमित्तस्थान नमः स्वाहा ओम निमित्ताय नमः स्वाहा ओम नंदये नमः स्वाहा ओम नंदीकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा ओम नंदिने नमः स्वाहा ओम नंदनाय नमः स्वाहा नंदीगोवर्धनाय नमः स्वाहा ओम भागहरिणे नमः स्वाहा नियश्रे नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा पितामहाय नमः स्वाहा चतुर्मुखाय नमः स्वाहा ओम महालिंगाय नमः स्वाहा ओम चारुलिंगाय नमः स्वाहा ओम लिंगाध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम सुराध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम योगाध्यक्षाय नमः स्वाहा युगवहाय नमः स्वाहा बीजाध्यक्षाय नमः स्वाहा बीजकर्ते नमः स्वाहा अध्यात्मनागतनाय नमः स्वाहा बलाय नमः स्वाहा इतिहासाय नमः स्वाहा सकल्पाय नमः स्वाहा गौतमाय नमः स्वाहा निशकराय नमः स्वाहा दम्भाय नमः स्वाहा ओम अमदाय नमः स्वाहा ओम विदम्भ्याय नमः स्वाहा ओम वैश्याय नमः स्वाहा वसकराय नमः स्वाहा कलये नमः स्वाहा ओम लोकर्ते नमः स्वाहा ओम पशुपतये नमः स्वाहा ओम महाकर्ते नमः स्वाहा ओम अनौषधाय नमः स्वाहा ओम अक्षराय नमः स्वाहा ओम परमाय नमः स्वाहा ओम परमाय ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम बलवते नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम नित्यै नमः ओम अनित्यै नमः ओम शुद्धात्मने नमः स्वाहा ओम शुद्धाय नमः स्वाहा ओम मान्याय नमः स्वाहा ओम गतागताय नमः स्वाहा ओम बहुप्रसदाय नमः स्वाहा ओम सुप्रश्नाय नमः स्वाहा ओम दर्पणाय नमः स्वाहा ओम अमित्रजिते नमः स्वाहा ओम वेदकाराय नमः स्वाहा ओम मंचकाराय नमः स्वाहा ओम विदिशे नमः स्वाहा ओम समरदर्दनाय नमः स्वाहा ओम महाभिनिशाय नमः स्वाहा ओम महाघोराय नमः स्वाहा ओम वसिने नमः स्वाहा ओमकराय नमः स्वाहा अमनिज्वलाय नमः स्वाहा महाज्वलाय नमः स्वाहा ओम आदि विदुम्नाय नमः स्वाहा ओम हुताय नमः स्वाहा ओम विषे नमः स्वाहा विषाय नमः स्वाहा शंकराय नमः ओम नित्यवर्षिणे स्व नमः ओ धूम्रकेताय नमः स्वाहा ओम नीलपराय नमः स्वाहा ओम आंगुलद्याय नमः स्वाहा ओम शोभनाय नमः स्वाहा ओम निवर्गाय नमः स्वाहा स्वस्तिदाताय नमः जी तो है नमः ओम स्वति भावाय नमः ओम भागिने नमः ओम भागकराय नमः स्वाहा ओम लघवे नमः स्वाहा उत्सन्नाय नमः स्वाहा महंकराय नमः स्वाहा महागरपराय नमः स्वाहा कृष्णवर्चाय नमः स्वाहा सुवर्णाय नमः स्वाहा ओम सर्वदेहिनाम इंद्रियाय नमः स्वाहा ओम महापादकाय नमः स्वाहा महाहस्ताय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा महायशसे नमः स्वाहा महाग्रभूमि नमः स्वाहा महामात्राय नमः स्वाहा महानेत्र्याय नमः स्वाहा निशालाय नमः स्वाहा महाकांताय नमः स्वाहा महाकर्णाय नमः स्वाहा महेष्टाय नमः स्वाहा हणवे नमः स्वाहा महाहणवे नमः स्वाहा मानसाय नमः स्वाहा महागम्पवे नमः स्वाहा महागविषाय नमः स्मरसानभाजे नमः महाभक्षे नमः ओम महेश्वराय नमः स्वाहा मरुरसकाय नमः स्वाहा अंतरात्मने नमः स्वाहा मृगालाय नमः स्वाहा ओम लंबानाय नमः स्वाहा ओम लंबिस्थोसाय नमः स्वाहा महामायाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा मयोपदानिये नमः स्वाहा पयोनिधये नमः स्वाहा महादंताय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा महाजिह्वाय नमः स्वाहा ओम महामुखाय नमः स्वाहा महानखाय नमः स्वाहा महासुराय नमः स्वाहा महाकोशाय नमः स्वाहा महाजटाय नमः स्वाहा प्रसन्नाय नमः स्वाहा ओम प्रसादाय नमः स्वाहा ओम प्रपत्याय नमः स्वाहा गिरिसादनाय नमः स्वाहा स्नेहाय नमः स्वाहा ओम अहस्रयाय नमः स्वाहा ओम अजिताय नमः स्वाहा महामुनये नमः स्वाहा वृक्षकाराय नमः स्वाहा वृक्षकेतवे नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बाहुबायनाय नमः स्वाहा गंडलिने नमः स्वाहा मेरुदाग्ने नमः स्वाहा मेरुधाम्ने नमः स्वाहा देवादी नमः स्वाहा देवाधिपतये नमः स्वाहा अथर्ववर्षीयाय नमः स्वाहा सामवैशीयाय नमः स्वाहा साक्षसामिश्रयाय नमः स्वाहा ऋक्सहस्रामितिक्षणाय नमः स्वाहा ओम यजुपादभुजाय नमः स्वाहा ओम गुह्याय नमः स्वाहा प्रकाशाय नमः स्वाहा जंगमाय नमः स्वाहा अमोघराय नमः स्वाहा प्रसदाय नमः स्वाहा अभिज्ञाय नमः स्वाहा ओम सुदर्शनाय नमः स्वाहा ओमकराय नमः स्वाहा ओम प्रियाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा कनकाय नमः स्वाहा कंचन छवय नमः स्वाहा ओमनावय नमः स्वाहा नंदिकाराय नमः स्वाहा ओम भावाय नमः स्वाहा पुष्कर।

0: प्रजापते नमः स्वाहा ओम स्थिराय नमः स्वाहा द्वादशाय नमः स्वाहा ओम त्रासनाय नमः स्वाहा ओम आद्याय नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः स्वाहा नक्तम नमः ओम कलये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम मकराय नमः स्वाहा ओम कालपूजिताय नमः स्वाहा ओम सगणाय नमः स्वाहा ओम गुणकराय नमः स्वाहा ओम भूत वाहन सारथे नमः स्वाहा ओम भस्माय नमः स्वाहा भस्मधाराय नमः स्वाहा भस्मगोत्ने नमः स्वाहा भस्मसयाय नमः स्वाहा भस्मगोत्ने नमः स्वाहा भस्मभूताय नमः स्वाहा ओम तरवे नमः स्वाहा ओम गणाय नमः स्वाहा लोकपालाय नमः स्वाहा अलोकाय नमः स्वाहा अमात्मने नमः स्वाहा ओम सर्वपूजिताय नमः स्वाहा ओम शुक्लाय नमः स्वाहा त्रिशुकाय नमः स्वाहा संपन्नाय नमः स्वाहा अशुचाय नमः स्वाहा भूत निविशिताय नमः स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः स्वाहा क्रियावस्थाय नमः स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः ओम ओम बराय नमः स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः स्वाहा इट्स हाफ हाफ ऑफ द वे नाउ
1: ओके
0: हरि ओम ओम अम्बुजालाय नमः स्वाहा सुनिश्चलाय नमः स्वाहा कपिलाय नमः स्वाहा कपिशाय नमः स्वाहा शुक्लाय नमः स्वाहा आयुषे नमः स्वाहा ओम अपराय नमः स्वाहा ओम पराय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम आदित्ये नमः स्वाहा तक्षर्ताय नमः स्वाहा सुविज्ञेयाय नमः स्वाहा सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम अनुकारणे नमः स्वाहा सुबान्धवाय नमः स्वाहा तुम्बणिदाय नमः स्वाहा महाक्रोधाय नमः स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा जलेशयाय नमः स्वाहा उग्नाय नमः वसंकराय नमः स्वाहा ओम वंशाय नमः स्वाहा वंशनादानाय नमः स्वाहा अविन्दाय नमः स्वाहा अनिन्दिताय नमः स्वाहा सर्वांगरूपाय नमः स्वाहा मायाविने नमः स्वाहा ओम सुहृदाय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनल्लघाय नमः स्वाहा बन्धनाय नमः स्वाहा बन्धकर्ते नमः स्वाहा सुबन्धविमुचाय नमः स्वाहा सहस्रार्गे नमः स्वाहा सहस्रज्ञरथे नमः स्वाहा सकारमानाय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा मायायुधाय नमः स्वाहा बहुधानन्त्याय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम अमरेशाय नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम विश्वदेवाय नमः स्वाहा ओ सुराग्रिणे नमः स्वाहा अहिर्भूद्याय नमः स्वाहा अनिलाभाय नमः स्वाहा शेखितानाय नमः स्वाहा हविषे नमः ओम अजय पातके नमः स्वाहा अजय कपाते नमः स्वाहा ओम कापिले नमः स्वाहा त्रिशङ्के नमः स्वाहा अजिताय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम धनंतरे नमः स्वाहा ओम धूमकेतवे नमः स्वाहा ओम इसंदगाय नमः स्वाहा वैष्णवाय नमः स्वाहा ओम धात्रे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम मित्राय नमः स्वाहा ओ तोष्ट्रे नमः स्वाहा ओम ग्रीवाय नमः स्वाहा ओम धराय नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय वाय नमः स्वाहा सर्वगाय वायवे नमः स्वाहा अर्थमे नमः स्वाहा सवित्रे नमः स्वाहा ओम रवये नमः स्वाहा ओ संगे नमः स्वाहा विधात्रे नमः स्वाहा ओम मान्धात्रे नमः स्वाहा भूतभावनाय नमः स्वाहा ओम विभवे नमः स्वाहा ओम बणविवाहिने नमः स्वाहा ओम सर्वकामगुणाय नमः स्वाहा सर्वकामगुणवहाय नमः स्वाहा पद्मनाभाय नमः स्वाहा महागर्वाय नमः स्वाहा चन्द्रवस्त्राय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बलवते नमः स्वाहा उपशान्ताय नमः स्वाहा पुराणाय नमः स्वाहा पुण्यसञ्चने नमः स्वाहा ओम ए नाम स्वाहा कुरुकर्त्रे नमः स्वाहा ओम कुरुवासिने नमः स्वाहा कुरुभूताय नमः स्वाहा ओम गुणदोषाय नमः स्वाहा। ओम सर्वासाय नमः स्वाहा। धर्मचारिणी नमः स्वाहा। सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः स्वाहा। ओम देवा देवाय नमः सुमुख शक्ताय नमः स्वाहा। ओम सते नमः स्वाहा। ओम असते नमः स्वाहा। ओम सर्वरत्न वेद नमः स्वाहा। ओम कैलासगिरी वासिने नमः स्वाहा। हिमविद्नी संस्थाय नमः स्वाहा। हिमबद्धी सहस्रसाय नमः स्वाहा। ओम कुलहरिणे नमः स्वाहा। ओम कुलकत्रे नमः स्वाहा। ओम भौविद्याय नमः स्वाहा। ओम बहुप्रदाय नमः स्वाहा। ओम वाणिज्याय नमः स्वाहा। ओम वरदकिने नमः स्वाहा। ओम वृक्षाय नमः स्वाहा। ओम वकिलाय नमः स्वाहा। ओम चंदनाय नमः स्वाहा। ओम छदाय नमः स्वाहा। ओम अलोलाय नमः स्वाहा। ओम सारग्रीवाय नमः स्वाहा। ओम महाजत्रे नमः स्वाहा। ओम अलोचाय नमः स्वाहा। महासौदाय नमः स्वाहा। सिद्धकारिणे नमः स्वाहा। ओम छदाय नमः स्वाहा। ओम चंदनाय नमः स्वाहा। ओम वृक्षाय नमः स्वाहा। वरदकिने नमः स्वाहा। वाणिज्याय नमः स्वाहा। वकिलाय नमः स्वाहा। बहुप्रदाय नमः स्वाहा। बहुविद्याय नमः स्वाहा। सिद्धार्थकारिणे नमः स्वाहा। सिद्धार्थ छंदो व्याकरणोत्तराय नमः स्वाहा। सिंहनादनाय नमः स्वाहा। सिंहधर्मराष्ट्राय नमः स्वाहा। सिंहगाय नमः स्वाहा। सिंहवाहनाय नमः स्वाहा। प्रभात्मने नमः स्वाहा। जगत्कालस्थनाय नमः स्वाहा। लोकहिताय नमः स्वाहा। अमतरवे नमः स्वाहा। सारंजाय नमः स्वाहा। नवचक्रांगाय नमः स्वाहा। अमकेतुमालिने नमः स्वाहा। सवानाय नमः स्वाहा। भूतालयाय नमः स्वाहा। भूतपतये नमः स्वाहा। अहोरात्राय नमः स्वाहा। अग्निदिताय नमः स्वाहा। सर्वभूतानां बाह्यत्रे नमः स्वाहा। अनिलाय नमः स्वाहा। अभिभवे नमः स्वाहा। भवनाय नमः स्वाहा। अमुगाय नमः स्वाहा। संगताय नमः स्वाहा। अश्वाय नमः स्वाहा। भोजनाय नमः स्वाहा। प्राणधाराय नमः स्वाहा। घृतमिदे नमः स्वाहा। अमिताय नमः स्वाहा। दक्षाय नमः स्वाहा। सत्कृताय नमः स्वाहा। युगधापिताय नमः स्वाहा। गोपालाय नमः स्वाहा। गोपतये नमः। ओम ग्रामाय नमः स्वाहा। गोमवर्चनाय नमः स्वाहा। ओम हरये नमः स्वाहा। ओम हिरण्यवाये नमः स्वाहा। प्रवेशिनाय नमः स्वाहा। गुहालपालाय नमः स्वाहा। प्रकिष्ठारे नमः स्वाहा। महर्षाय नमः स्वाहा। जितकामाय नमः स्वाहा। जितेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम गंधधराय नमः स्वाहा। उषताय नमः स्वाहा। 720
1: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड तपस्सक्ताय नमः स्वाहा। ओम रतये नमः स्वाहा। ओम नराय नमः स्वाहा। महागीताय नमः स्वाहा। मायानित्याय नमः स्वाहा। अप्सर गण वेत्य शिवाय नमः स्वाहा। महाकेतवे नमः स्वाहा। महाधातवे नमः स्वाहा। नैनक्यसुनुचार्य नमः स्वाहा। नेकसानुचराय नमः स्वाहा। ओम चलाय नमः स्वाहा। ओम आवेदनीयाय नमः स्वाहा। आदेशयाय नमः स्वाहा। सगंध सुखावहाय नमः स्वाहा। ओम तोरणाय नमः स्वाहा। ओम तारणाय नमः स्वाहा। ओम बाताय नमः स्वाहा। परिधने नमः स्वाहा। परिखेचराय नमः स्वाहा। संयोगार्थ वर्धनाय नमः स्वाहा। संयोगाय वर्धनाय नमः स्वाहा। ओम वृद्धाय नमः स्वाहा। अतिवृद्धाय नमः स्वाहा। ओम अतिवृद्धाय नमः स्वाहा। ओम गुणाधिकाय नमः स्वाहा। ओम नित्यामात्मसहाय नमः स्वाहा। देवासुरपतये नमः स्वाहा। ओम पतये नमः स्वाहा। ओम युक्ताय नमः स्वाहा। ओम युक्तभावे नमः स्वाहा। दिवि सुपर्णे नमः स्वाहा। अषढाय नमः स्वाहा। उषपसाय नमः स्वाहा। ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा। ओम हरिणाय नमः स्वाहा। ओम हराय नमः स्वाहा। आवर्तमाने भीवसे नमः स्वाहा। ओम वसुश्रेष्ठाय नमः स्वाहा। महापथाय नमः स्वाहा। ओम शिरोमणिये नमः स्वाहा। सर्वलक्षणसिद्धाय नमः स्वाहा। अक्षाय रथ योगिने नमः स्वाहा। ओम सर्वयोगिने नमः स्वाहा। महाबलाय नमः स्वाहा। सामग्नाय नमः स्वाहा। ओम अस्मायानाय नमः स्वाहा। तीर्थदेवाय नमः स्वाहा। महारथाय नमः स्वाहा। निर्विजयाय नमः स्वाहा। ओम जीवनाय नमः स्वाहा। ओम मंत्राय नमः स्वाहा। ओम मंत्राय नमः स्वाहा। ओम शुभाक्षाय नमः स्वाहा। बहुकर्णनाय नमः स्वाहा। ओम रत्नभूताय नमः। रत्नंगाय नमः स्वाहा। महाबनी पाणिदेयाय नमः स्वाहा। महार्णबणी पानविदे नमः स्वाहा। ओम मूलाय नमः स्वाहा। ओम विशलाय नमः स्वाहा। ओम अमृताय नमः स्वाहा। ओम व्यक्त्या व्यक्त्याय नमः स्वाहा। ओम तपोनिधे नमः स्वाहा। ओम आरोहराय नमः स्वाहा आधिरुहाय नमः, स्वाहा शीलधारिणे नमः, स्वाहा ओ महायसने नमः, स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः, स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः, स्वाहा ओम योगाय नमः, स्वाहा ओम युगकराय नमः, स्वाहा ओम हरये नमः, स्वाहा ओम युगरूपाय नमः, स्वाहा ओम महारूपाय नमः, ओम स्वाहा महानगनाय नमः, स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः, स्वाहा ओम बधाय नमः, ओम स्वाहा महानागगणाय नमः, स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः, स्वाहा ओम मातपदाय नमः, स्वाहा ओम पादाय नमः, स्वाहा ओम पंडिताय नमः, स्वाहा ओम अचलोपदाय नमः, स्वाहा बहुमालाय नमः, स्वाहा महामालाय नमः, स्वाहा शशिनी हर सुलोचनाय नमः, स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः, स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः, स्वाहा ओम सफल दयाय नमः, स्वाहा अवृतलोचनाय नमः, स्वाहा विष्णवे नमः, स्वाहा मणिसिद्धाय नमः, स्वाहा ओम जटाधराय नमः, स्वाहा ओम बिंदवे नमः, स्वाहा ओम विसर्गाय नमः, स्वाहा सुमुखाय नमः, स्वाहा ओम सराय नमः, स्वाहा ओम सारुभूताय नमः, स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः, स्वाहा ओम सहायाय नमः, स्वाहा निवेदनाय नमः, स्वाहा सुखा जाताय नमः, स्वाहा सुगंधाराय नमः, स्वाहा महाधनुषे नमः, स्वाहा गंधपालिने नमः, स्वाहा ओम शंकाय नमः, स्वाहा उत्थानाय नमः, स्वाहा ओम मंथनाय बाहुबलये नमः, स्वाहा मंधाननाय बहुल बावे नमः, स्वाहा ओम सकलाय नमः, स्वाहा सर्वलोचनाय नमः, स्वाहा तलस्थालाय नमः, स्वाहा करस्थालिने नमः, स्वाहा ऊर्ध्वसमूह नाननाय नमः, स्वाहा ओम महते नमः, स्वाहा ओम छत्राय नमः, स्वाहा सुछत्राय नमः, स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः, स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः, स्वाहा ओम मुन्नाय नमः, स्वाहा ओम विरूपाय नमः, स्वाहा ओम विकृताय नमः, स्वाहा ओम दंडिने नमः, स्वाहा ओम कुन्निने नमः, स्वाहा विकृणवणाय नमः, स्वाहा अरिहच्छाय नमः, ओम कुंभाय नमः, स्वाहा ओम ककुभाय नमः, स्वाहा ओम वज्रिणे नमः, स्वाहा ओम शतविजाय नमः, स्वाहा सहस्रपादे नमः, स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः, स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेव मापाय नमः, स्वाहा ओम गुरवे नमः, स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः, स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः, स्वाहा ओम शरण्याय नमः, स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः, स्वाहा ओम पवित्राय नमः, स्वाहा त्रिककुळे मात्राय नमः, स्वाहा कनिष्ठाय नमः, स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः, स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माताय नमः, स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः, स्वाहा पद्मगर्भाय नमः, स्वाहा महागर्भाय नमः, स्वाहा ब्रह्मगर्भाय नमः, स्वाहा ओम जलोद्भवाय नमः, स्वाहा गवस्ते नमः, स्वाहा ब्रह्मकृते नमः, स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः, स्वाहा ब्रह्मवेदे नमः, स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः, स्वाहा ओम गतये नमः, स्वाहा अनंत रूपाय नमः, स्वाहा ओम नैकात्मने नमः, स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः, स्वाहा ऊर्ध्वगामद्मे नमः, स्वाहा उपस्पदे नमः, स्वाहा बातहराय नमः, स्वाहा मनोजवाय नमः, स्वाहा चंदनीये नमः, स्वाहा चंदनीने नमः, स्वाहा पद्मनालग्राय नमः, स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः, स्वाहा ओम नराय नमः, स्वाहा कणिकार महास्रग्विणे नमः, स्वाहा ओम नीलमौलये नमः, स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः, स्वाहा उमापतये नमः, स्वाहा उमाकांताय नमः, स्वाहा जाह्वविभृते नमः, स्वाहा उमाधवाय नमः, स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः, स्वाहा ओम वरदाय नमः, स्वाहा ओम वरेण्याय नमः, स्वाहा ओ सुमहास्वाय नमः, स्वाहा महाप्रसादाय नमः, स्वाहा दमनाय नमः, स्वाहा शत्रुघ्ने नमः, स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः, स्वाहा प्रीतात्मने नमः, स्वाहा परमात्मने नमः, स्वाहा प्रयात्मने नमः, स्वाहा प्रधानधृते नमः, स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः, स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः, स्वाहा धर्मसाधने नमः, ओम धर्मसाधारणोपराय जन्नमः, स्वाहा चराचरात्मे नमः, स्वाहा सूक्ष्मात्मने नमः, स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः, स्वाहा सारदस्याय नमः, स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः, स्वाहा विश्वदवस्ये नमः, स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः, स्वाहा ओम व्यासाय नमः, स्वाहा ओम स्वर्गाय शुंगुपाय विस्ताराय नमः, स्वाहा पर्यायोनराय नमः, स्वाहा ओम ऋतये नमः, स्वाहा ओम संवत्सराय नमः, स्वाहा ओम मासाय नमः, स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः, स्वाहा ओ शंका समनाय नमः, स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः, स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः, स्वाहा लवेभ्यो नमः, स्वाहा मातृभ्यो नमः, स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपास्यो नमः, स्वाहा ओ वर्ण शिव्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सती नमः स्वाहा ओम असती नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अव्यक्ताय नमः स्वाहा पितृे नमः स्वाहा मात्रे नमः स्वाहा ओम पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्गद्वाराय नमः स्वाहा प्रजाद्वाराय नमः स्वाहा मोक्षद्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गते नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा देवासुर गणैकृत्यै नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वाय नमः स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः ओम सर्वदेवी मयाय नमः स्वाहा अंजिन्याय नमः स्वाहा देवतात्मने नमः स्वाहा आत्मसमवाय नमः स्वाहा उद्यमे नमः स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओम वेदाय नमः स्वाहा विरजाय नमः स्वाहा नीरजाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा इराय नमः स्वाहा ओम हस्तीश्वराय नमः स्वाहा बेग्राय नमः स्वाहा देवसीमाय नमः स्वाहा नरऋषभाय नमः स्वाहा विबुधाय नमः स्वाहा अग्निवराय नमः स्वाहा ओम सूक्ष्माय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा तपोमाय नमः स्वाहा ओम सुक्ताय नमः स्वाहा सुयुक्ताय नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा अभिवाय नमः स्वाहा जी ओम शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा ओम निसर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम गृहाय नमः स्वाहा अव्याय नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा ओम कांताय नमः ओम निजाय सर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंग प्रियाय नमः स्वाहा प्रभुजे नमः स्वाहा राजराजाय नमः स्वाहा निराजायाय नमः स्वाहा अभिराय नमः स्वाहा अभिरामाय नमः स्वाहा सुरगणाय नमः स्वाहा अभिरामाय नमः स्वाहा सर्वसाधनाय नमः स्वाहा ललाटाक्षराय नमः स्वाहा विश्वदेवाय नमः स्वाहा हरिणाय नमः स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः स्वाहा स्थावरणाम नमः स्वाहा स्थानपतये नमः स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः स्वाहा नियमेन्द्रिय वर्धनाय नमः स्वाहा सिद्धार्थाय नमः स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः स्वाहा अंचित्याय नमः स्वाहा सत्यव्रताय नमः स्वाहा शुचये नमः स्वाहा व्रताधिपाय नमः स्वाहा ओम परस्परे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम भक्तानां पुरयाय गतवे नमः स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः स्वाहा ओम श्रीमते नमः स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः स्वाहा ओम जगतपतये नमः स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावले शिवार्पणम् स्वाहा हर हर महादेव शिव जी के 11
1: 1008
0: names तो शिव जी को वो करके फिर करते हैं बचा है बचा वेट वेट हाँ तो 11 टाइम्स वी एवरीवन चैंट ओम नमः शिवाय स्वाहा टुगेदर ओके ओम

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पूर्णावती देंगे कंप्लीटली। नाउ एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो यही है, यही है। नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम। यहाँ पे बचा हुआ गिरा दीजिए। वट एवर लेफ्ट ओवर वी गोइंग टू ऑफर नाउ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसी, वसो पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसो। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम। दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के। ओम बलमसी बलमही देई मन्योमसी।

ओजमहीदेहि मन्युमसि मन्युमहीदेहि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। द फाइनल पीस प्रेयर ओम देव शांति रंतरिक्ष गुं शांति शांति रापा शांति रो सधाया।

0: शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद दकम भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते चंदनं तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय। सांब सदा शिव जी को जय। बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय। पशुपति नाथ को जय। सदा शिव को जय। चारो वेद को जय। महालक्ष्मी महासरस्वती को जय। चारो वेद को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद स्वामी जी को जय। हरि ओम।
1: धन्यवाद। Take your finger and like this and make tilak, okay? They should dip their
0: something. We put a little ghee.

బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తి ద్వందాతీతం గగన సదృశ్యం తస్మస్యాదిలక్ష్యం ఏకం అనిత్యం విమలచలం సర్వదిశాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుతం నమామ్యం. అదక్పురి జీ మహాదేవ కీ, దేవాది దేవ్ శివ స్వరూప్ దేవపురి జీ మహాదేవ కీ, ఆరాధ్య భగవాన్ శ్రీ దీప్ నారాయణ మహాప్రభు జీ కీ, ఆరాధ్య సద్గురుదేవ్ హిందూ ధర్మ సమ్రాట్ శ్రీ స్వామి మాధవానందపురి జీ మహారాజ్ కీ, సనాతన ధర్మ కీ, భక్త ఔర్ భగవాన్ కీ జయ. ఆరాధ్య గురుదేవ్ కే సభీ పరమ భక్త ధర్మ ప్రేమీ సజ్జనో, ఆజ్ కా దిన్ బడా హీ శుభ దిన్ హై. గురు పూర్ణిమ కా పర్వ, ఆప్ సభీ కో ఓం శ్రీ అలక్పురి జీ సిద్ధపీఠ పరంపరా కీ ఓర్ సే ఆశీర్వాద్. బ్లెస్డ్ సెల్ఫ్, స్పిరిచువల్ సీకర్స్, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ రౌండ్ ద వరల్డ్, టుడే ఆన్ దిస్ హోలీ ఒకేషన్ ఆఫ్ శ్రీ గురు పూర్ణిమ, బ్లెస్సింగ్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఓం శ్రీ అలక్పురి జీ సిద్ధపీఠ పరంపరా, హోలీ ల్యాండ్ భారత్. వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్. The Guru Purnima has many meanings. First, what Upanishad and Veda says, Tamaso ma jyotirgamaya, lead us from the darkness to the light. అజ్ఞాన సే జ్ఞాన్ కీ తరఫ్. ఆరాధ్య గురుదేవ్ శ్రీ స్వామి మాధవానందజీ భగవాన్ కేతే థే, జ్ఞానహీనా పశు సమానా, విదౌట్ నాలెడ్జ్ వన్ ఇస్ లైక్ ఎనిమల్. Knowledge is the light, and ignorance is the darkness. The light of the knowledge is not this physical light which we see with our physical eyes, but it is the light which is within ourselves, in each and every entity. But out of 8.4 million different creatures, human have got a special body and got a powerful tool that's called intellect. But the intellect, బుద్ధి జో హై, బుద్ధి కో జ్ఞాన విద్యా చాహియే. బుద్ధి
को जैसी शिक्षा जैसा ज्ञान दोगे वैसा ही व्यक्ति सोचेगा बनेगा. What kind of education you will get, like that you will be and you will think like that. In the police training, the policeman goes, he gets the training for the police, how to act, how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver, similarly, चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है, आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है. Therefore, the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master and in Hindi we say guru. That's all. झगड़ा केवल भाषा का है और कुछ भी नहीं. आप रामायण गीता पढ़ोगे तो मुसलमान शायद नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर वो कुरान में उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो. बात वही है. अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इट्स ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तारा मामा री बू है, कोई. मारी माँ है, मामी नहीं कहना. एक है हमारी दादी है, एक है हमारे माँ है, दूसरे कहता है हमारी बेटी है, तीसरे कहता है हमारी बहन है, और दूसरा कहता है हमारी बुआ है, दूसरा कहता है हमारे काकी है. आंटी नहीं ये बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी. आड़ी क्यों गंदी गंदी बात करो, है काका काकी बाजी बाजी वो करो. लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, हमारी पोती है. है वो महिला एक ही है क्या? नहीं, एक ही महिला है. नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया. दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन, व्हिच गॉड हैज नो नेम. And all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education, we get in the Gurukul. Gurukul means school.
अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है। नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है। उन्होंने ठा तो है को नहीं, बाप जी हमारे टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ानी, अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरों ने नौकरी नहीं लागे, नौकरी पड़ी खाडा रे माए। मनुष्य बनाओ बच्चे को, आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिर मन झाड़ू लगावाने को नहीं लागे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है। तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे, जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पया, अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न क्यों अंग्रेजी में भाषण दो कि नहीं मैं हिंदी में बोलू, बाप जी बोलो आदि कचरी है। हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा मैं रस तो पूछ कर जानो के स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं कि राजस्थान में जाऊं कि मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही, स्टेट स्टेट आथारी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कहते मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी। वो 4 शब्द नहीं कियो और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेशी नहीं, रेशी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रह नहीं ने रेशी सुथारी, आ होनारी परी जई के बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी के, रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई। कौन कहवे? कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी कह रही है। तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृति के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग दिस इंडियंस दे शुड लर्न देयर मदर टंग एंड देन आफ्टर दे शुड लर्न इंग्लिश, दे डोंट नो इंग्लिश and they forgot the Hindi. I asked someone address, I where it, which the direction is going there, where is that place? So say state
is not a path, direction, straight. But वो straight तो आता नहीं है. और महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें, तो हम कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई गाड़ी चलाओ, कॉन्सेंट्रेशन करो. तो वो क्या कौन सा स्टेशन, अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहा है, नहीं कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन, आधारी अंग्रेजी ने आधारी हिंदी. सही बात है कि नहीं. इसलिए दैट्स व्हाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन. सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एबिलिटीज, दिस इज ए गुरु पूर्णिमा एंड देन इज ए वर्शिप ऑफ दैट डिवाइन हु गेव यू द नॉलेज. देन इज ए बर्थडे ऑफ भगवान वेद व्यास एंड एवरी डिसाइपल एडोर्स रिमेंबर्स टू कीप दिस लिविंग कल्चर. सो गुरु पूर्णिमा इज ए फेस्टिवल ऑफ द कल्चर टू प्रोटेक्ट द कल्चर, इज कॉल्ड ए लिविंग कल्चर. सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म. सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म. व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट मीन्स द लिविंग धर्म? वन मदर गिव्स ए बर्थ टू ए चाइल्ड. इट इज द धर्म ऑफ द मदर टू गिव ए बर्थ टू द चाइल्ड. इज हर धर्म, वो सनातन धर्म है. ए वन ट्री गिव्स यू फ्रूट. इट इज द धर्म ऑफ द फ्रूट ट्री टू गिव द फ्रूट. एक मां बच्चे को जन्म देती है, बच्ची को जन्म देती है, वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है. और इस युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है. कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में. स्कूल के मास्टर आपके गुरु है. इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक, बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन. द रिलेशन ऑफ द मदर चाइल्ड हस्बैंड वाइफ नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Therefore, the Guru Purnima has a great meanings than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी. वो एक की जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी. वो ही इसीलिए that is the greatest festival, that's called living festival. Sorry, Guru Purnima is living festival. Jinda aur sab sampraday chali jayegi, lekin ye sanatan sanskriti kabhi nahi mitegi, kyunki ye shishya aur guru ka nata hai. आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद. आप आए, यू केम ऑल, वेलकम. नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत. तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा.
कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है। तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यहीं पे होना के बाबूजी कमरो के कमरा तो गले जा हुई जा, कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है। माँ कोई नाग देवता बैठा वेला तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है, जको ध्यान राख जो भाई सरप परप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो। और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना। अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा। कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठे तो इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है। भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना, सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड। इफ यू वांट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी वेबकास्ट एंड भजन्स वेन एवर यू लाइक, यू कैन पुट ऑन योर television and you can see or hear the bhajan.

0: भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव
1: जय।
0: देवपुरी सा महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
1: जय।

0: भगवान की
1: जय।
0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की,
1: जय
0: सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, माता पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की। गुड इवनिंग,
1: दोबरी वेचर,
0: ऑल डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ऑल ब्लेसिंग ऑफ आवर गुरु परंपराज।
1: Všetci moji drahí bratia, milé sestry, mnoho požehnaní od guru od Alakpuriči Parampara.
0: We are here to come again to how to give the education for our little children.
1: Dnes budeme hovoriť o tom, ako dávať správnu výchovu našim malým deťom.
0: Of course, the mother is the best one. She's giving children very nice how to live with them, that they can play, they can be healthy. Mother is the mother.
1: Matka vie najlepšie, ako sa

0: अलकपुरी जी महादेव की जय, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की ओम। हरिओम हरिओम।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

भगवत ओम शांति शांति शांति। श्री प्राण भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म ओम शांति।

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतम।

ईश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हियर इन दिस हॉल एंड ऑल डियर भक्तास राउंड द वर्ल्ड उज बी

ओम श्रीदीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन दार

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
2: Now we will have next bhajan Akiya Sataguru, Charanomelage.

0: ओम सदीपन भगवान की
1: जय,
0: श्री देवेश्वरमती की
1: जय,
0: श्री श्यालक पोची मायोक्षित की
1: जय,
0: श्री स्वामी भगवान की जय, विश्व कोचि मामलेश्वर पमन सुगिरा श्री स्वामेश्वर जी गुदीव
1: की जय।